हर की पूजा दुर्लभ है संतो, हे संत जनो हरि दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावै जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा कई चीज लभिया लभ जांदी है पर कहिंदे ने इह दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर देखन

तेरी पूजा प्रवान ता हो सकती है जे तू मालक दा पाना अपने मन च वसा लै, मालक दा हुक्म अपने अंदर वसा लै। जदों मालक दा हुक्म तेरे अंदर वस गया तेरी पूजा प्रवान हो जाएगी। अगे सतगुरु उपदेश कहंदे ने, पूजा करे सब लोक संतो, पूजा करे सब लोक संतो, सारे लोग पूजा करते हैं क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मैं पूजा करा, पर यह गल वखरी है पूजा परवान किसी की चढ़ती है, हर कोई नहीं चढ़ा लेना क्योंकि पूजा करने की एक मर्यादा है, एक नियम है, एक लॉ, एक कानून है। जब तक तू उस ला कानून दे विच नहीं आउंदा ओ पूजा प्रवान नहीं हुंदी। हुण साहिब कहिंदे ने, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। मन मुख दी पूजा कदे थाए नहीं पैंदी, क्यों? मन मुख कहिंदे ने जिदा मुख गुरु वाल ने, पूजा ते कर रहा दिखावा कर रहा है, लोगों नूं समझ आ रही कि पूजा विच बैठा है, लेकिन वह कहिंदा नहीं मैनू लोग देखण के मैं पूजा कर रहा हां। कई लोग पगटावा ज्यादा करते ने। इसे तरह भाई सेवा सिमरन की गल है, जिन्हें सेवा करनी है पगटावा ना करे, सेवा लगा रहे, सेवा लगा रहे। जो तो सेवा च लगे आपे मालक प्रवान कर लेगा। इसे तरह प्रभु की पूजा है, तू तो पूजा विच लगा रहो, अपना आप प्रगट ना कर, क्योंकि सिमरन कर्म वाला तो आपे प्रगट हो जाता है, उथे कहन की लोड़ नहीं रह जाती।

सच्चे पातशाह। प्यारे गुरुदेव सतगुरु साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज, इस शब्द दे विच ये दसते हैं कि आप जी की आत्मिक अवस्था इस तरह की है कि हों जीवा नाम ते आए। जदों तक मेरे ध्यान दे विच वाहिगुरू तेरा नाम तेरी याद रहिंदी है, उदों तक मैं अपने आप नूं अलाइव महसूस करदा हां, जिंदा महसूस करदा हां।

तू मेरे प्यार हो तो कैसी भूखा है, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरियां दूर होंदियां। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए, ए मेरे प्रीतम। प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक्सप्रेशन है, ए मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान है। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आखते हैं अमृत प्रिया का नाम, प्रिया प्यारा कहते हैं मेरे प्यारे का जड़ा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। सात संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हाँ जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार। ध्यान नाल सुन, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च नाम प्यार। कहते हैं

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले के नाल महाराज जी का प्यार है, उसके नाल मोहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नू उसका नाम प्यारा लगता है। सो इतों दो नुक्ते सिद्ध होंदे हैं। नंबर एक कि गुरु महाराज जी का अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है तो गुरु महाराज जी ही सानू उस नाम वाले तक ले जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ही उस नाम वाले नाल साडा प्यार पवा सकते हैं, क्योंकि प्यार किसे ना किसे एक्सपीरियंस के बेस उते हुंदा है। उस नाम वाले दे नाल सानू मिलांगे, उस नाल मिलन दे नाल जो सानू एक्सपीरियंस होएगा वो इतना वंडरफुल होएगा, इतना मैजिकल होएगा, इतना मिरेकुलस होएगा कि इंस्टेंटली वी विल फॉल इन लव विद दैट। पर जब तक असी उसनू मिलांगे ही नहीं, उस नाल प्यार किवें हो सकेगा? तो प्यार पाउण दे वास्ते कोई विचोला चाहिदा है जिहड़ा उसनू जानदा होवे, उस तक पहुंच रखदा होवे अते दूसरां नू उस तक लजा सकदा होवे। उही प्यार पवा सकदा है ना। हुण असी महाराज जी तों आओ गुरबाणी चों पुछीए सच्चे पातशाह साड़ी समस्या यह है कि साडे पास प्यार नहीं है। आप जी का तो प्यार है पर साडे पास प्यार नहीं है, तो फिर साडा प्यार किस तरह करे? सवाल मेन इशू यह है महाराज जी, आप जी के घर रब ही रब है और उसका नाम ही नाम है। आप जी नू वो भी प्यारा है, उसका नाम भी प्यारा है, पर साडे ते तरस करो ना, तो असी उसनू जानते हैं ना, साडा उसके नाल प्यार है। क्योंकि जे प्यार होवे तो फिर यह किस तरह हो सकता है कि साडा उसका नाम जपन च मन ना लगे? ये किवें हो सकता है? जे प्यार होवे तो मन ना लगे। जदों प्यार हो जाता है उदों टाइम एंड स्पेस दोनों भुल जाते हैं, तो सानू नाम जपन लग्यां नू कदे लत थक जाएगी, कदे कमर दुखेगी, कदे कुछ होएगा, कदे इचिंग होएगी, और असी टाइम देखते रहांगे। एक घंटा सानू नाम जपन लिए आख्या जाए तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम, तीन घंटे की असी पिक्चर आराम नाल देख सकते हैं। सो साडा प्यार नहीं, लेट अस एडमिट दिस। गुरु महाराज जी का प्यार है उस नाम वाले दे नाल, ते जिस दे नाल प्यार होवे उसका नाम भी प्यारा लगता है और उस दी सारियां चीजा प्यारिया लगदियां। मेरा नाम ही नहीं, जिस दे नाल प्यार होवे उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है। इस करके महाराज जी ने आख्या है, तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण के ते। उस दे नाल प्यार है करके कहंदे हन तेरे अनेका तेरे च गुण हन, क्योंकि जिदे नाल प्यार होवे ओच ही गुण नजर आया करते हैं। जिदे नाल प्यार ना होवे ओच भावे गुण भी होण तां भी अवगुण दिसिया करते हैं। महाराज जी कहते हैं तेरे अत्यंत गुण हैं, अते उस दी हर चीज तो महाराज कहते बलिहारी कुदरत वसिया, कहते तेरी कुदरत तो भी मैं बलिहार हूं, तेरी कुदरत तो मैं बलिहार हूं। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन जो है वो प्यार दी है। महाराज जी का उस नामी दे नाल प्यार है, उस दे नाम नाल प्यार है, उस दी रचना दे नाल प्यार है। इत्थों तक के असी तो अपने आप से कई दफा तरस करते हैं कि सानू लाइफ क्यों मिल गई है। What to do with it? We don't know. Sometimes

संतां संगत मिल रहे, क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हन, प्रेम रूप हुंदे हन। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है, ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है साधी, ध्यान नाल अपनी जिंदगी च देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारे दे नाल ही बनानी है, मैं सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनु सुनो और नोट कर लो बाद दे विच। कहते हैं संत संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सह

any number. A circle surrounding you. जिसने ए मंग मंग ली है उसदिया सारिया मंगा पूरी और केड़ी मंग नानक को ब्रह्मया कर सच देव क्योंकि सच सदा रहने वाली पूर्ण बिखुटे नानका पूर्ण में हो गया पूरे पदार्थ पहले भी नहीं रहे तो इस वास्ते हमें पूर्ण बिखुटे नानका ओणक सच और सिद्ध भी है दास पातशाह मैं सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान को दुनिया सबका आधे रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे चलने वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले भजन फरमाते सच्चे मार्ग चल देना पुष्ट करे सच जड़ा सच पे बोलता है वो दुध पे जड़ा झूठ पे बोलता है वो जहर पे सच बोलने जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोलने जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराऊंगी वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब पर सानू केड़ा अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा नहीं फिर उसकी राखी करनी पैदी संभाल करनी पै फिर सानू जोड़ा अंब फल है वह प्राप्त इसे तरीके उस वाहिगुरु की प्राप्ति का साधन यह वाहिगुरु शब्द वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र बाबा ईश सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरु मंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाही टिकट दुनियावी सफर करना होने ता भी टिकट की जरूरत टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसे तरह उस दरगाह जाने वास्ते मार्ग तक पहुंचने वास्ते प्लीज सानू टिकट चाहिए एक दिन रस्ती रस्ती दुनिया में छड़ के पुत्र धियां त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने किसी ने पूछा मारे ऐ धन गुरु अर्जुन देव पातशाह पहला यह दसो भाई जिस रस्ते पे एक दिन इंसान भी तुर रहे हैं हमारा पता दसो कितने वीर उसके पोह कितने प्रयाग सब बांबे जाना मीलों का पता
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਭ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਵੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन ते डारे ओढ़े वस्त्र का

मन क्यों बैरा करेगा। छेवी विशेषता ही ध्यान देना, इस बाणी नाल गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नाल जोड़न वाले दी केवल झोली नहीं भर रही, वो अगों झोलियां भरन वाला भी बन सकता। जी क्या सतना गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दी छेवीं विशेषता ही है। इथों तक नहीं लिमिट के तू पढ़ेगा तू जुड़ेगा तो तेरी झोली भरेगी। नहीं, ये बाणी तेनू अगों झोलियां भरन वाला भी बना सकता। किन्ने जिक्र दास दे सामने आ रहे ने, अमृतसर जी गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी का चुगाड़ दे कोल ही खलो जाओ ते मेरे ख्याल एक मिंट विच कितने शरीर अंदर जांदे ने। बाबा दीप सिंह जी दे दर दे उत्ते गुरु प्यारेओ इशारा लेना है कौन ने। बाबा दीप सिंह जी एक सिख ही ने ना कलगिया वाले दे, पर बाणी नाल एहो जे जुड़े के चाबियां ही मिल गईयां दूजियां दियां झोलियां भरन दे। दमदमी टकसाल की किताब च लिखिया 101 पाठ जपजी साहब बाबा दीप सिंह जी का नितनेम। बाणी ने खुराक बनाया, चाबियां मिल गई। अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी। बाणी इनी कृपा अगो झोलियां भरन लई बना दे झोलियां। संगरूर तो एक शरीर जे उन्हें वचन सुनाया प्यार संगरूर तो, किसे ने उदे ते केस करता, उन्हें एक शरीर नू कुछ मैंबरां नू उदे घर भेजिया दो महीने बाद, भी केस तू वापस ले लै जो तेरा खर्चा आया वो दे देने झगड़ा चंगा नहीं। उन्हें कहा ठीक है खर्चा दे दो, मेरा किन्ना आया 86,000 खर्चा आया। उन्हें दे दिता 86,000 खर्चा। कहन लगे राजीनामा लिख लो। कहन लगा लिखण दी लोड़ नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जामा ने तुहाडा साडा समझौता हो गया, राजीनामा हो गया। पर अंदर कोर्ट ध्यान देना केस वापस ना ले। ओ शरीर दी घरवाली ने बाबा दीप सिंह दे दर ते 43 चुपहरे सुख ले। सच्चे पातशाह हुण तू कृपा। उन्हें बचन सुनाया छेवां चुपहरा सी ते अदालत वल्लों ही केस जेड़ा ना जी ओ खत्म करता भी ये बनदा ही नहीं। आखो सतनाम, साडा ना निश्चा बन गया बाबा दीप सिंह दे दर ते। ध्यान दे 43 चपेरे।

पहला मार्ग, पहला रास्ता, पहली जुगत। सतगुरु कृपा करदे ने साहिब धन गुरु अर्जन पातशाह साहिब कहिंदे ने प्यारे आ, कदी मच्छी नू देख लै, उदा पानी नाल किन्ना प्यार है, उदा जीवन ही पानी है। एक खिन भी ना धीरे एक पल, एक क्षण भी ओ नहीं रह सकती, दे जे पानी विचों कटदे हो ते भाई उन्हें मर जाने। जे तेरा प्यार इदां दा हो जाए गुरु नाल, इदां दा सुने किते तू गुरु नाल कर लवे ते तेरे जीवन विच पलटा ना आ जाए। शायद कहिंदे ने

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाती बूंद दे पिछे पपी पपी प्या करदा साहब बाणी विच कहिंदे ने

साहब उपदेश करते ने प्यारे अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला लिया, अहंकारियां नू पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिन्ना नाम जपया सिमरन कीता भावें कोई वड्डा है भावें कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू नाम जपण वालियां नू सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजे शरण भरी जाए, हंकार ना कर प्यारे अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह ध्यान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने।

जे भाई सत्तां समुंदरां दे पानी दी स्याही बना ले जावे। कलम करो बन राय, सारे जंगल ते सारी बनस्पति दियां कलमां बना लिया जावन।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्या मालका कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरुदा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरुदेव प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चात्रक ने पबीए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है। जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरा मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जुड़े।

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। सेवा मिल गई है तो तर ही है, तदे तो मार्ग मक्ष गंगा राम रात दिन भांडे मांझी जाते, गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक कर दादो भागा वाला दिन चाहिए। धन गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शन गुरु बख्शिश कर, जिस तरह बख्शिश हो गंगा राम की सेवा थाए करू, क्योंकि कहीं ने इशारा किया समा सुख की घड़ी का पता ही नहीं, आखो सही दुख की एक घड़ी आ जाए कि नहीं आ जाए पता ही लगे किस तरह समा यही है मान गुरु अमरदास पातशाह आप सारे मार्ग ने बहन की तो आप जो सेवा मिल जाए गुरु का जी करो, इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए। गंगा राम दे सदके सानू ही दीदार का किड़का मिल जाए, फिर साडा कीर्तन कीता सुनिया पर गुरु कारण किसी की कामना जाया नहीं जिसने भी कर तन मन धन न जिसने भी सेवा की थी है अदूर फरमाते जाके सिमर सब कुछ पाइए बिरथी उसी भी कामना कर अपनी कामना भी गंगा राम जी कामना किस तरह गुरु ने अमृत साढ़े टाइम साढ़ी आशा जी अमृत वेला सच ना बड़े आई जिदा नाम ही अमृत वेला है वो उसद की कामना समय अनुसार आओ कल पूर्णमासी क्योंकि पूर्णमासी का नाम लीए तो भाई गुरु नानक पातशाह खां ने सामने पूर्णमासी गुरु ने माण बता पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश ताइ बाबा ने सिंह जी उथे चौबी घंटे का सत्संग है नानक डेली कोई आए चाहे पूर्णमासी का समाज खास होता है नॉर्थ इंडिया होवे बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरता है कि साई की प्रेरणा अनुसार पूर्णमासी थोड़े को भी जुड़े हुए हो थोड़े दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे च वसावांगा सुरत नारंग सर पहुंचा के दर्शन कर और खर्ग पूर्णमासी आप आओ गंगा राम जी साखी सुन के अपना जीवन सफला करो। आप जिस गुरु ने सानू ये दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए यही अरदास करिए पहले अमरदास तेरी तेरी रहमत है मेरे पातशाह की तासी कलयुगी जी थां थां ते कलयुग रुकावटां ते माया कई रूप धार के पिछड़ी किथे आए अजे आ गए तो मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नु पा गए आखो सही गुरु नु पा गया तो जीवन सारी मिलके करिए उस तो प्राप्ति करिए धन गुरु नानक पातशाह आप जी ने करम करम साई गुर सिख माई भाई धन गुरु राम का अमरदास पातशाह जी आप जी का आगमन गुरपुरब मना
ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ

जन्मे अर्शो संगन जया राजलीला राजन की रचना करया हुकुम अपारा सृज सौनी चंदन शोभा नाथ कौर का द्वारा हर तीर्थ साध संगत है सिर कर्म से कर्मा पौराणिक पयो पराप।

कीर्तन सहो मन राता। तेरो सेवक एह रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख पंजन, हर हर कीर्तन सहो मन राता। आओ दूजा वाहेगुरु जी का।

अर्थ वह करके अर्थात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो। सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपाण न बिनती काल कृपाण न बिनती ना तो तुमको सब न कर हो। बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कूट पराद हमारे हो। कूट पराद हमारे हो। अनक विधि समझाओ अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन विरत रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेल।

रखना खाली ना रहे। आओ सारे मालिक दे दर ते हाथ दिया लगे। बाबा जी वचन कर दे सन जरा गुरु नानक दे दर खाली चला जाएगा और सारा खाली रहेगा। आओ चोरी करो ते सारे हाजी कीर्तन हो रहे। कीर्तन दे प्यार वाले कीर्तन रिकॉर्ड कर रहे। टेपा लगी कुछ बुद्धि अनुसार जो सेवक बोली जाता है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो छोटी टेप है गुरु नानक पातशाह के दरबार इतनी वही सारी टेप लगी हुई है। जो भी गुरु कुमारी भाई इतने आता है जिस पहुना आता है वो रिकॉर्ड होया जाता है।

इस देव सिख माली दे कोल होर भी बहुत सारे माली कम सिखदे ने। ए देव सिख जिथे बाग दा काम करदे दूसरिया नू माली दा काम सिखांदा है, नाल गुरबाणी दा भी प्रेमी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणा दा प्यारा एक देव सिख एक एदी घरवाली एक 11-12 साल दी इन्हां दी लड़की ए तीनों जी गुरबाणी दे नाल जुड़े हुए शुभ गुणा दे नाल जुड़े हुए काम कार करदे अपना जीवन बिता रहे ने। मां बाप धार्मिक ख्यालां दे होण ते बच्चियां ते भी इसका असर होंदा। माता पिता अमृत वेले उठदे ने ते बच्ची भी अमृत वेले उठदी, मां बाप अमृत वेले उठ के बाणी पढ़दे ने, बच्ची भी नाल बाणी पढ़दी, ते परिवार गुरबाणी नाल जुड़िया होया। ए देव सिख कदी कदी फुल्लां दा काम करदा अपनी घरवाली और अपनी बच्ची नूं कहा करदा है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे ने। आनंदपुर साहब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहिंदे ने उन ऐसा बाग लवाया है, हर तरह दा फुल उस बाग विच मिलदा है। जिस तरह इंसान दी संभाल करी दीए इसे तरह साहब जी फुल्लां दी संभाल करदे। पिता दे कोलों इह गल्लां सुण के वह 11-12 सालां दी बच्ची मन विच प्यार आया, एक दिन कहन लगी, पिता जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे, तां मैं भी अपने हत्थां दे नाल फुल उगा के आनंदपुर साहब लै के जावांगे। अपनी बच्ची दी इह भावना देखी ते देव सिख निहाल हो गया, गल विच पल्ला पाया, हाथ जोड़ के कहन लगा, ऐ कलगीधर पिता तू अंतर्यामी है, जानी जान है, अगर मेरी बच्ची दे मन विच ऐसी भावना है तो कृपा करी पातशाह यह भावना एदी हमेशा बनी रहे। फुल्लां दी बहार सी ते ओ सिख नवे फुल लगा रहे है, ए बच्ची भी चकोदरे नाम दा एक फुल इसने फुल बीजे है। जिस दिन फुल बीजे है उस दिन मन दी ऐसी भावना हो गई जदे फुल वड्डा होवेगा आनंदपुर साहब लैके जावांगे। ज्यों सवेर दी बैठी शाम तक उस फुल दे सराहणे बैठी रही, रात कर गई, सारी रात उस फुल दा ध्यान, अमृत वेले उठी उस फुल दा ध्यान, दिन बीतते गए बीज पुंगरिया, चकोदरे दा फुल हौली हौली खिलण लग पिया। ऐ बच्ची दिन रात सौंदिया बहिंदिया खांदिया पींदिया उस फुल विच ध्यान, कदू फुल वड्डा होवेगा, कदू आनंदपुर साहब लैके जावांगे। ए एक प्यार है, इस बच्ची नूं नहीं पता प्यार की हुंदा है, पर एक खिच है
एक तड़प है मन विच और उमर उमर देखिए तो उमर कुछ भी नहीं पर जे प्यार देखिए ते कैसा प्यार उठदिया बहदिया फुल विच ध्यान निरा फुल च ध्यान नहीं गुरु पिता दे चरणा विच भी ध्यान कदू फुल वड्डा होवेगा ते लैके आनंदपुर साहिब।

प्रभु दे प्यार दी, परमेश्वर दे प्यार दी आपां विचार कर रहे सां। होशियारपुर दे विच रहण वाला

अपनी घरवाली दे नाल चकोतरे दा फुल लैके जा दियो सिख दे घर पहुंचे। अमृत वेला हो चुका सी, उस वेले एना की तकिया एक मंजी ते वो बच्ची लम्मी पई बेसुरत है ते वो सिख एदी घरवाली होर सतसंगी गुरसिख प्यारे बैठे ने और सारे बैठ के श्री सुखमणी साहब का पाठ पै कर दे। बच्ची की हालत जसवंत राय देख के उदा हिरदा पारा आया, मन पारा आया। जसवंत राय अगे होया